0: Let me now take you through the top story of the hour coming in from Maharashtra. While Pune's cold-blooded murder of Ketan Agarwal has caused shockwaves across the nation, NDTV has accessed shocking probe details in the murder plot that was allegedly hatched by his 22-year-old fiancé Sia Goyal and her alleged lover Chetan. Investigators say that the accused were in constant contact, made multiple visits to the very fort, and even discussed the alleged murder plan at a cafe before the incident. The breakthrough came after CCTV footage, suspicious movements and questions raised by Ketan's family prompted police to reopen the probe. While probe also reveals that Sia allegedly pushed Ketan off the fort walls during their second visit together. As a report, she also had a plan C in place to kill him in Mahabaleshwar if the fort plan would fail. Well, NDTV's managing editor Shivarur has exclusively spoken to Ketan Agarwal's father. Let's listen into the conversation.
1: Chal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter claims samne aaye hain, lekin main aapse puchna chahta hu ki aapke mutabik Ketan ke sath Lohagarh fort mein क्या हुआ था, क्या हुआ था विशाल जी?
2: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में.
1: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को. क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
2: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो.
1: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था? उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
2: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब

0: Let me now take you through the top story of the hour coming in from Maharashtra. Well, Pune's cold-blooded murder of Ketan Agarwal has caused shockwaves across the nation. NDTV has accessed shocking probe details in the murder plot that was allegedly hatched by his 22-year-old fiancée Sia Goyal and her alleged lover Chetan. Investigators say that the accused were in constant contact, made multiple visits to the very fort, and even discussed the alleged murder plan at a cafe before the incident. The breakthrough came after CCTV footage, suspicious movements and questions raised by Ketan's family prompted police to reopen the probe. While probe also reveals that Sia allegedly pushed Ketan off the fort walls during their second visit together. As a report, she also had a plan C in place to kill him in Mahabaleshwar if the fort plan would fail. Well, NDTV's managing editor Shivarur has exclusively spoken to Ketan Agarwal's father. Let's listen into the conversation.
1: Chal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter claims samne aaye hain, lekin main aapse puchna chahta hu ki aapke mutabik Ketan ke sath Lohagarh fort mein kya hua tha? Kya hua tha Vishal ji?
2: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में.
1: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को. क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
2: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया, सांप आया धक्का देके. लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो.
1: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
2: जी, क्योंकि जब

0: rupees 17 crore wedding planned for a Rajasthan palace in November. But investigators now claim the relationship was far from perfect. Police allege that Sia was involved in a secret relationship with Chetan Chaudhary. According to the investigation, the two saw Chetan as an obstacle and allegedly conspired to remove him. On June 18th, Chetan fell 400 feet into a gorge at Lohagarh Fort near Pune during what was supposed to be a birthday trek. Sia initially told police and family members that Chetan had accidentally slipped while posing for pictures. But as the investigation progressed, police claimed the fall was no accident. Perhaps the most chilling detail emerged hours after Chetan's death. Sia posted an emotional birthday message online saying, "Left me on my birthday." Police now believe the post was a part of an attempt to portray the incident as a tragic accident. What followers saw as a fairy tale romance is now at the center of a murder investigation that has shocked Maharashtra. Bureau Report, NDTV.
1: Let's track more updates coming in at this hour. Let's turn our attention to West Bengal. A new battle is being fought in West Bengal, the one that has brought the Mamata camp and the rival camp of the TMC MLAs together. Now, the new Bengal government has roped in the ISKCON to prepare and serve midday meals in schools under the Kolkata Municipal Corporation area. And ISKCON's push for Sattvic vegetarian menu has sparked off a political storm. Well, the TMC has accused the state government of hypocrisy, alleging that the BJP leaders campaigned with fish in their hands and now the new government is taking eggs off the plates of school kids. Alleging the imposition of vegetarianism, now they even asserted that Bengal will not accept it. ISKCON, on the other hand, argued that egg is not the only source of protein and that Sattvic food is also nutritious.
2: ये गलत है कि एग में ही प्रोटीन रहता है और उसका कोई वेजिटेरियन अल्टरनेटिव नहीं है आज अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली से लेकर बहुत सारे विश्व के फेमस एथलीट हैं जो एक्टिव हैं उनका पूरा लाइफस्टाइल उनका वेजिटेरियन है और बड़े बड़े लोग इवन आजकल तो ट्रेंड हो गया है विदेशों में कि जो फॉरेनर्स हैं वो वेजिटेरियन लाइफस्टाइल वीगन लाइफस्टाइल अपना रहे हैं तो ऐसा नहीं है और आप देखिए हमारे इस्कॉन के 4 करोड़ भक्त विदेश में हैं और 4 करोड़ भक्त भारत में हैं तो ये जो 8 करोड़ लोग हैं वो बहुत आपको स्वस्थ नजर आएंगे
3: ये मिड डे मील में ये अंडा एक ऐसा चीज है ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं ये न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए बच्चे को साइकोलॉजी में ये अंडा बहुत इंटरेस्टिंग होता है अट्रैक्टिव होता है तो अगर इस्कॉन मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है उसको तो भेज करना पड़ेगा तो बच्चे लोगों का मेनू नॉनवेज से भेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट होगा ये डिसीजन रिकंसीडर कीजिए
4: हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा मैंने चला आ रहा है तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है अंडा एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है मसूर का दाल एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है तो ये हटाना ठीक नहीं है ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा तो बंगाल के पैमाने में ये ठीक बात नहीं है हम लोग इसका विरोध कर रहे
1: हैं। On that note, we begin to very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को दो तीन बार, बीच में क्या हो गया, दो तीन बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना, लोहगढ़ जाना, लोहगढ़ जाना।
1: Let's now take you through more updates coming in at this hour. Well, Pune's cold-blooded murder of Ketan Agarwal has caused shockwaves across the nation. NDTV has even accessed the shocking probe details in the murder plot that was allegedly hatched by his 22-year-old fiancée Sia Goyal and her alleged lover Chetan. Now, investigators say that the accused were in constant contact, made multiple visits to the fort and even discussed the alleged murder plan at a cafe before the incident took place. Now, the breakthrough came after the CCTV footage showed suspicious movements and even raised questions by Ketan's family about how, you know, they even prompted police to reopen the probe. Now, probe also reveals that Sia allegedly pushed Ketan off the fort walls during their second visit together. As the reports, she also had a plan C in place to kill him in Mahabaleshwar in case the fort plan fails. Now, important details now stemming in from the case.
2: देखा था इस पूरी घटना को, सबसे पहले क्या हुआ?
3: सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था,
2: ठीक है,
3: यहाँ से बहुत दूर है वो, फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भाग कर आया, इधर भाग कर आया, फिर बोली कि यहाँ से गिरा।
2: सिया ने क्या बोला आपको?
3: सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया, फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया,
2: ठीक है,
3: फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया,
2: ठीक है,
3: फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं।
2: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
3: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है,
2: ठीक है,
3: वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी,
2: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
3: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
1: Well, NDTV's managing editor Shiv Varur has exclusively spoken to Ketan Agarwal's father. Let's also listen into the conversation.
4: चाल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था, क्या हुआ था विशाल जी?
5: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
4: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
5: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
4: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
5: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का

0: every constitutional body was in a sense taken to task by Indira Gandhi, and therefore this dark chapter needs to be remembered, needs to be studied, and we should never forgive or never forget.
1: So, you know, contrary to what the BJP says, the Congress says that the emergency was necessary to save the country from political chaos. What exactly do you have to say on this?
0: No, I think that anybody who justifies the emergency by saying this kind of thing only shows that they have not learned the lesson in history. I mean, to say that the emergency was necessary, that suspension of fundamental rights was essential, that the application of those laws which did not even allow you judicial review was essential, it only shows that the emergency period must have gone away, but the emergency mindset persists. So anybody who justifies it is doing the biggest disservice, and it shows that they're not committed to the Constitution at all.
1: Right, absolutely, sir. Thank you so much for joining us and sharing your thoughts with us. Well, an important day in history, of course, you know, we're also seeing the NCERT that's going to introduce the class 9th, a chapter in the class 9th textbook on emergency that's going to be talking on this. Now, an important day, of course, we're going to see political activity coming with the BJP and Congress hitting out at one another. Let's now take you through more updates coming in at this hour, and let's take you to Maharashtra. While Pune's cold-blooded murder of Ketan Agarwal has caused shockwaves across the nation, NDTV has accessed shocking probe details in the murder plot that was allegedly hatched by his 22-year-old fiancé, Sia Goyal, and his alleged lover, Chetan. Investigators say that the accused were in constant contact, made multiple visits to the fort, and even discussed the murder plan at a cafe before the incident. The breakthrough came after CCTV footage, suspicious movements, and even questions raised by Ketan's family prompted the police to reopen the probe. The probe also reveals that Sia allegedly pushed Ketan off the fort walls during their second visit together. As per reports, she also had a plan C in place to kill him in Mahabaleshwar in case the fort plan failed.
2: यहाँ से बहुत दूर है वो, फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भाग कर आया, इधर भाग कर आया, फिर बोली कि यहाँ से गिरा।
3: सिया ने क्या बोला आपको?
2: सिया को, सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया, फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोले यहाँ से कोई मतलब गिर गया, फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया, फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं।
3: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
2: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है,
3: ठीक है,
2: वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी,
3: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज़्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
4: देखिए, ये परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं, उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है, और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी, ये मेरे हमारे कज़न मामा जी लगते हैं। तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की, लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को, उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में। मामा जी बोले लड़की मेरे आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को 2-3 बार, बीच में क्या हो गया, 2-3 बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना।
1: Well, NDTV's managing editor Shivarur has exclusively spoken to Ketan Agarwal's father. Let's listen into the conversation.

0: चल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था? क्या हुआ था विशाल जी?
1: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई। उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
0: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को। क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
1: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हक कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
0: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
1: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
0: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
1: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे, वो फोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी, रोज एक दो फोन उसके आते ही थे।
0: कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
1: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर।
2: Well, my colleague Sujata joins us on the broadcast to shed more light on this. Sujata, we just spoke to the grieving father, and he's also talking about how there were no, you know, feelings that the family had that, you know, she did not want to go ahead with the wedding. Help us understand what are some of the revelations that are coming to light at this point in the investigation.
3: Well, Reet, there are several of these allegations that the family has now put up, not only on Sia, but also on the family of Chetan and Sia, where they claim that the family was very much aware that Sia was in a relationship with Chetan because it was almost more than a year. And not just that, Sia's brother too was a close friend of Chetan. Now, because of that, the family has been raising suspicion that is it so that the family was unaware? And if that is not the case, then they too must be investigated, and stringent action and punishment should be given to both Sia and her family, and Chetan and the family. But also, while speaking to the uncle of Ketan here, while we spoke, he said that there's a common relative that both the families share, which is Renu Narendra Mittal and her husband. And she was the one who first set up this entire arranged marriage, and she fixed them up. Now, this is when they had assured the family of Ketan that Sia happens to be from a good background, and she's going to be a great choice for Ketan and family, and that is how they agreed. But at the same time, were they really aware of what was

0: भारत में है, तो ये जो 8 करोड़ लोग हैं वो बहुत आपको स्वस्थ नजर आएंगे।
1: ये मिड डे मील में ये अंडा एक ऐसा चीज है, ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए, बच्चे को साइकोलॉजी में ये अंडा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो अगर इस्कन मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उसको तो भेज करना पड़ेगा। तो बच्चे लोगों का मेनू नॉनवेज से भेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये डिसीजन रिकॉन्सिडर कीजिए।
2: हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है, तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
3: Switching tracks from West Bengal now to Karnataka, another political firestorm has erupted in the state. This is after the CAG audit that's flagged several financial irregularities that have taken place in the government of Congress. This is the Congress government's 75,000 crore rupees Lakshmi scheme, the Gruha Lakshmi scheme, and the BJP has slammed the government and have demanded a CBI probe. BJP's R. Ashok has said that Rahul Gandhi's Karnataka model has been exposed. The Congress government strongly is hitting back, denying a scam and asserting that a statewide survey is underway to sanitize that very data. Earlier, Chief Minister D.K. Shivkumar had said that this scheme is the pride of the government of Karnataka and it won't be stopped under any circumstances. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side as to what is happening in Venezuela. There have been back-to-back earthquakes between 39 seconds. There have been two earthquakes that have been the strongest in over a century. That and a lot more on the other side.

0: accessed details as far as his 22-year-old fiance of Ketan Agarwal, who alongside her lover Chetan, and you know, plotted and planned multiple times. In fact, they had a plan C in place if this did not work, when she took him to the same fort for the second time and tried to push him down. This time around, she succeeded along with Chetan to push Ketan down that fort. But had that not worked, they would have had to carry out another plan, which is going to take place in Mahabaleshwar. Mahabaleshwar is a place where it was the family of Ketan that was going to be celebrating her birthday. Her birthday was the very next day, on the 19th of June. They had invited many people. They had booked many rooms in Mahabaleshwar to celebrate the birthday of their to-be daughter-in-law. So the investigation has said that the accused was basically in touch constantly. They had made multiple visits to the fort. They had even discussed the alleged murder plan and the breakthrough that came about after they had accessed CCTV footage. The police had accessed CCTV footage. It's only after the sister of Ketan raised alarms in regard to the kind of responses she got from Sia after the death of her brother. She said she asked questions time and again, but there were no answers. She had no response whatsoever. She didn't get any kind of response from Sia, and that led her to get suspicious as to what really happened. The questions that she really asked was, what happened? What led him to the edge of that cliff? Why was he at the edge of the cliff? What really happened? How did he fall? From which way did he go down? All those questions to which there were just about no answers. Let's listen in to what the watchman at that fort had to say, and the family members of Ketan Agarwal.
1: आपने देखा था इस पूरी घटना को, सबसे पहले क्या हुआ?
2: सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था,
1: ठीक है,
2: यहाँ से बहुत दूर है वो। फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भाग कर आया, इधर भाग कर आया, फिर बोली कि यहाँ से गिरा।
1: सिया ने क्या बोला आपको?
2: सिया को, सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया, फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया,
1: ठीक है।
2: फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया,
1: ठीक है।
2: फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं।
1: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
2: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है,
1: ठीक है,
2: वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी,
1: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
3: परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं, उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है, और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी, ये मेरे हमारे कजन मामा जी लगते हैं। तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की। लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को, उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में। मामा जी बोले लड़की मेरे, आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को दो तीन बार, बीच में क्या हो गया, दो तीन बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना।
0: Were there any signs of resistance from Sia's side as far as this, you know, alliance is concerned, this matrimonial alliance? Well, let's listen into what the father of Ketan had to say. Were there any signs that he picked up on? Shivarur spoke to him exclusively in this interview. Let's listen in to Ketan Agarwal's father.
4: Chal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai, aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal Vishal ji, kyunki अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ

0: भगड़ फोर्ट में क्या हुआ था? क्या हुआ था विशाल जी?
1: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
0: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
1: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
0: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
1: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
0: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
1: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे, वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी, रोज़ एक दो फ़ोन उसके आते ही थे।
0: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके ज़िंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
1: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर।
2: That was the father speaking with Shivarur and talking about that alleged love triangle and a failed first attempt, secret meetings and the sister's persistence that finally got these two nabbed. Let's get you all the details on the case so far.
3: On June 18, real estate businessman Ketan Agarwal fell into a gorge at Lohgarh Fort near Pune. The Lonavala Rural Police initially treated the case as an accidental death. But even after Ketan's funeral, his sister was not convinced. 4 days later, Ketan's fiancée, Sia Goyal, visited the family to offer condolences. During that visit, Ketan's sister asked detailed questions about what had happened on the day of the incident. According to investigators, inconsistencies in Sia's version of events raised red flags. The family returned to the police, triggering a fresh investigation. As officers reviewed CCTV footage, technical evidence and phone records, the case took a dramatic turn. Investigators allegedly discovered a relationship between Sia Goyal and Chetan Chaudhary. Police claimed the two had been in regular contact for months. Call records show more than 2,000 phone conversations over 6 months, lasting a combined 238 hours. The investigation also focused on a mysterious figure seen on CCTV at Lohgarh Fort. Despite the scorching summer heat, the man was wearing a monkey cap, hoodie and a mask. Police say the individual was seen communicating with Sia through hand signals, further strengthening their suspicions. Investigators now believe the alleged plot may have been in motion for weeks. Ketan and Sia had visited Lohgarh Fort 3 times on May 31st, June 14th and June 18th. Police claim an earlier attempt to push Ketan into the gorge was

0: कोने में।
1: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है।
0: ठीक है,
1: वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी।
0: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
1: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
2: देखिए, ये परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं, उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है, और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी, ये मेरे हमारे कज़न मामा जी लगते हैं। तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की। लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को, उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में। मामा जी बोले, लड़की मेरे आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को 2-3 बार, बीच में क्या हो गया, 2-3 बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना।
3: Meanwhile, here's a snippet of the conversation NDTV's managing editor Shiv Arur had exclusively with Ketan Agarwal's grieving father.
4: Chal ji, pehle aapke family tragedy ko lekar mujhe bahut dukh hai aur humse baat karne ke liye dhanyawad. Mera pehla sawal Vishal ji, kyunki abhi tak coverage mein bahut claims, counter claims samne aaye hain, lekin main aapse puchna chahta hu ki aapke mutabik Ketan ke sath लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था, क्या हुआ था विशाल जी?
5: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
4: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
5: नहीं, उस टाइम शक कैसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का दे के, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
4: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
5: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं, इतने एज पे कैसा चला गया, तो उसने एक भी सवाल का जवाब दिया नहीं।
4: ये दोनों परिवार जो हैं विशाल जी, आपने कल बताया था मीडिया पर कि आप एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं, क्या कभी आपको कुछ ऐसे शक हुआ कि सिया खुश नहीं है इस अरेंजमेंट से, इस शादी का प्लान से खुश नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी सिग्नल था आपको?
5: कभी भी नहीं था। हर दूसरे दिन ये लोग बाहर किसी न किसी डिनर पे चले जाते थे, स्नैक्स खाने के लिए जाते थे, वो फ़ोन कर कर के बात करती थी, संजना से भी करती थी, मेरे मिसेस से भी करती थी।

0: मुझे एक दो फोन उसके आते ही थे।
1: और उसने कभी भी कुछ भी सिग्नल, कोई भी शक नहीं था आप में कि उसको नहीं करना था शादी और कोई और है उसके जिंदगी में, जो चेतन जो भी अरेस्ट हुआ है उसके साथ, जो सीसीटीवी में सामने आया है, आपको उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था इसके पहले?
0: कभी नहीं पता चला सर, बिल्कुल पता नहीं था सर।
2: As you just heard there, viewers, you see what appeared to be a picture-perfect romance on Instagram is now at the very center.

0: in its grade 9 social science textbooks. Here are a few reactions.
1: No question of misuse of agencies by the BJP. The misuse of power, the misuse of constitution happened only when the emergency was imposed, when people were sleeping at their homes. So in the present day world, when on the social media anybody is writing anything, the abhivyakti ki azadi, my right of free speech, how valuable it is, can be shown to the present generation only by making them aware what happened in 1975, how in the name of family planning Nasbandi was done, how people were picked up from the houses, kept in the thanas without informing their kith and kin.
2: The NCERT has taken a decision to include a chapter on the emergency as dangers to democracy and teach students, because we must not only remember and commemorate this dark chapter in India's constitutional history, but we must never ever repeat it. But unfortunately, Congress, they have imposed emergency back then in 75, and they continue to live in the emergency mindset. They are opposing it, Congress and its entire ecosystem. Why are you opposing it? Should you not welcome it? If you are a Samvidhan champion and you are not with Samvidhan ki hatya, then you must be the first one to say, yes, let us learn from the mistakes of the past, because those who don't are condemned to repeat it.
3: इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है. और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब इतिहास साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं. वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि हमें आगे देखना पड़ेगा. और आज जो चुनौती लोकतंत्र को है, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं मिली. जिस प्रकार दुरुपयोग कर आवाज़ को दबाया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, निर्वाचन आयोग, कोई संस्था हो, जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ.
4: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है. इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था. वो पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे. आप लोगों पर भी पूरा बैन था. ये कांग्रेस ने ये काम किया. और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं. हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रहे इसी आपातकाल. और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफ़ी नहीं मांगा आपातकाल के लिए.
5: ये कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात है.
6: 12 साल से देश में इमरजेंसी है, 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी. इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया. इंदिरा गांधी ने जब ये संघ के लोग थे जेल में, अटल जी, अडवाणी जी, जगन्नाथराव जोशी जी, बाला साहेब देवरा जी, तो जहाँ जहाँ जेल में थे वहाँ उनकी 5-स्टार व्यवस्था की थी इंदिरा गांधी.
0: My colleague Aishwarya Jain joins me live on this developing story. Aishwarya, new chapter, old politics. How's the Congress pushing back?
7: Well, certainly, a war of words have erupted between the Bharatiya Janata Party and Congress over the introduction of a new chapter on emergency in the NCERT textbooks in class 9. It is the Congress party which is clearly stating that it is Bharatiya Janata Party which is doing a witch hunt, which is not telling the real truth, and they wanted to misguide the youth of the country. While on the other side, the Bharatiya Janata Party clearly observing this day as Samvidhan Hatya Divas, and they are justifying this by saying that the youth of this country should know about how the emergency was imposed by then government of the Congress party in 1975, led by the then Prime Minister Indira Gandhi, what led to those circumstances and how the constitution was murdered at that point in time. The leaders were put into jail. The

0: the fort wall during their second visit together.
1: आपने देखा था इस पूरी घटना को सबसे पहले क्या हुआ?
2: सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था।
1: ठीक है।
2: यहाँ से बहुत दूर है। वो फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भागकर आया इधर भागकर आया, फिर बोली कि यहाँ से मेरा
1: सिया ने क्या बोला आपको?
2: सिया को सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया, फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया, फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया, फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं।
1: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
2: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है।
1: ठीक है।
2: वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी।
1: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
3: देखिए, ये परिवार को हम लगभग 30-40 साल से पहचानते हैं, उनके दादाजी हमारे दादाजी से पहचान है, और सिया की जो बुआ जी है और फूफा जी, ये मेरे हमारे कजन मामा जी लगते हैं। तो लगभग 11 फरवरी को ही उन्होंने हमारे साथ बातचीत चलाई, लड़की लड़के को दिखाया 12-13 फरवरी को, अच्छी तरह बातचीत की। लड़के ने लड़की को पहले देखा, उन्होंने हाँ किया, फिर हमारे लड़के ने लड़की को देखा, काफ़ी देर दोनों से बात हुए, बात राजी खुशी बहुत बढ़िया तरह से हुआ। 19 तारीख को सगाई का प्रोग्राम हुआ, 19 फरवरी को, उसके बाद दोनों बहुत अच्छे तरह से थे, हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छी तरह से फैमिली, मामा जी, कज़न मामा जी और मामी जी थी हमारी, इसलिए ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी लड़की के बारे में। मामा जी बोले लड़की मेरे आप बिल्कुल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो रिश्ता पक्का हो गया। बाकी फिर आगे चल रहे थे, बच्चे मिलते थे, करते थे, ये करते थे, सब करते थे, कोई किसी में तकलीफ नहीं थी। 19 तारीख को 2-3 बार, बीच में क्या हो गया, 2-3 बार लड़की जिद करने लग गई कि लोहगढ़ जाना।
0: NDTV's managing editor Shiv Arur has spoken to Ketan Agarwal's father. Listen to what he had to say.
4: चाल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था? क्या हुआ था विशाल जी?
5: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे, और ऊपर वो घूमने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
4: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
5: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
4: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
5: जी, क्योंकि जब केतन की बॉडी रिकवर हो रही थी, मतलब पुलिस लेके आई ऊपर, जो भी वहाँ से खाई से, तो उस वक्त मेरी लड़की संजना सिया से सवाल कर रही थी, तो सिया ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जनरल सवाल थे कि कैसे हुआ, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे, और वो तो एज पे जाता नहीं।

0: was not an impulsive act, but the culmination of months of planning. Police allege the accused met at a cafe to finalize the plot, used coded hand gestures to communicate on the day of the crime, and had even made an earlier attempt to eliminate Ketan that failed. Investigators also claim efforts were made to manipulate travel plans and create cover stories to conceal the alleged conspiracy. As the investigation progresses, each new revelation is adding another layer to what police describe as a cold-blooded and calculated murder plot. We have some news coming in. This has to do with UBT Shiv Sena. Well, the crisis is deepening because six UBT MLAs skipped the alliance coordination meeting. Three of these UBT MLAs also skipped the party's internal meeting held on the 22nd of June. The MVA meeting witnessed surprisingly low attendance is what we're hearing. 23 of the 60 MVA MLAs were absent from the meeting, and 23 out of the 60 MVA MLAs skipped the opposition coordination meeting. The NCP SP Chief Sharad Pawar and Jayant Patil also skipped the key MVA meeting, citing personal reasons. Uddhav Thackeray has questioned the MVA unity, asking if the alliance is truly united. So there are churns within the Shiv Sena UBT, and now questions also being raised over how reunited really is the MVA with so many MLAs being absent. But now we're going to cut across to a live press conference being held by Ravi Shankar Prasad.
1: Recall kar raha hun aapke madhyam se jo desh mein jana chahiye. Indira Gandhi ka election Rae Bareli se set aside ho gaya Allahabad High Court ke dwara. इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट आई उसके खिलाफ, उनको स्टे नहीं मिला. यही कहा गया, आप सदन में आ सकती हैं लेकिन बोलेंगी नहीं. अब आप समझ सकते हैं कि बड़ा फेमस जस्टिस कृष्णा अय्यर का ऑब्जर्वेशन था. ये जब वाकया हुआ तब इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश हुई, और उसी बचाने की कोशिश में इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया. तो पहली बात यह ध्यान रखिए कि विपक्ष का विरोध, देश को तोड़ने की बात, यह सब बिल्कुल बेबुनियाद है. इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए. पूरे विपक्ष के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मैं उसकी चर्चा करूंगा. लेकिन आज मैं 50 साल पूरे हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि सारे संवैधानिक जो संस्थान हैं उसको किस तरह से एब्यूज किया गया. टुडे इज द टाइम टू रिकॉल एज टू हाउ व्हाइल इंपोजिंग इमरजेंसी ऑल द साइन पोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द इंस्टीट्यूशंस we are brutalized by the then Congress government headed by Indira Gandhi. आपको मालूम है कि इमरजेंसी लगाने का जो प्रस्ताव था उस पर कैबिनेट की सहमति नहीं थी. रात के अंधेरे में फखरुद्दीन रही अहमद तत्काल राष्ट्रपति से दबाव देकर साइन कराया गया, और सुबह 6 बजे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई. उसके बाद सभी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, आरएसएस पर बैन लगा. क्या जेपी, क्या मुरारजी भाई, क्या अटल जी, क्या आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस तो संघर्ष कर रहे थे, मधु दंडवते, ये सभी गिरफ्तार हुए. मित्रों, जेल में जो तांडव हुआ है उसकी कहानी बहुत आई है. मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं. जेपी को गिरफ्तार करके रखा गया था हरियाणा में एक गेस्ट हाउस में. तो जेपी सुबह में जलपान कर रहे थे तो देखे सामने मुरारजी भाई टहल रहे हैं, उनको ऊपर रखा गया था. तो जेपी ने कहा मुझे उनसे मिलने दो. कहा आप नहीं मिल सकते. कहा ऐसा करो हम लोग को साथ नाश्ता करें दो. कहा आप नहीं कर सकते. ऐसा करो हम दोनों जलपान करेंगे तो हम लोग बीच में बैठ जाना. कहा नो. आप समझ सकते हैं कि जेपी मीसा में बंद हैं, सामने मुरारजी भाई हैं, आप मिल नहीं सकते हैं. अटल जी, आडवाणी जी बेंगलोर जेल में गिरफ्तार हुए. मित्रों

आप सभी पत्रकार पढ़े होंगे, तेरे को पेंशन चाहिए नसबंदी का कैंडिडेट ला, तेरे को प्रमोशन चाहिए नसबंदी का कैंडिडेट ला। पूरे देश में अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी शादी भी नहीं हुई है उसको भी जबरदस्ती नसबंदी, क्योंकि सीएम को भी था कि जितना नसबंदी का सर्टिफिकेट दोगे संजय गांधी की नजरों में उतना ऊपर जाओगे। तो ये मैंने आपको बताया ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ क्या हमला। अब मैं आता हूं प्रेस के खिलाफ। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर मार्ग है ना, यहां पर सभी अखबारों के कारण है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, बाकी है, इन सबों की बिजली काट दी गई थी 24 के रात में ताकि अखबार नहीं निकले। और यह हाल था, लोग पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं छपेगा, कई अखबारों ने अपना ब्लैंक संपादकीय लिखा। आपको मालूम है कुलदीप नायर की गिरफ्तारी हो गई थी मीसा में, बड़े संपादक थे, बंद कर दिए गए, जेपी के पक्ष में लिखते थे। बाकी कई बड़े पत्रकार, मैं क्या नाम लूं, एस निहाल सिंह हो या बाकी हो, इन सबों ने कहा वी विल नॉट राइट आवर एडिटोरियल्स। इतना अत्याचार किया गया। और आज जो लोग मीडिया पर हमला करने की बात करते हैं, बिका हुआ मीडिया है, उसमें इमरजेंसी में देखें, उनका एक चीफ सेंसर ऑफिसर था, बिना उसके अप्रूवल के कोई समाचार नहीं छपेगा। और संजय गांधी की देशभर में यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा, ये बात शाह कमीशन की रिपोर्ट में सवाई है। और बाकी तारीफ करने वाले तो लोग थे ही। अडवाणी जी ने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था, सम जर्नलिस्ट व्हेन दे वर कॉल्ड टू बेंड दे प्रेफर टू क्रॉल। कुछ जर्नलिस्ट से जो झुकने को कहा गया तो वो दंडवत करने को तैयार थे, ये सच्चाई है। बहुत से वेल नोन नेम है, नाम क्या ले लूंगा, आपको मालूम है, कुछ न्यूज पेपर्स थे, उसमें भी कई लोगों ने हिम्मत दिखाई। मुझे याद है कि छात्र संघर्ष नाम का एक हम लोग अंडरग्राउंड पेपर निकालते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मुझे सौभाग्य मिला था, अंडरग्राउंड में काफी एक्टिव था। आपको मालूम है जेपी की किडनी खराब हो गई थी, वो मुंबई के जसलोक अस्पताल में थे 26वें फ्लोर पर, तो कहा गया इनको थोड़ा धूप चाहिए, मना कर दिया गया, धूप में बैठेंगे तो नीचे मुंबई की जनता देखेगी तो उनको वेव करेगी। बाद में आज वो मर गए, सोली सोराब जी, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, उनका आई एम गोइंग टू मूव द बॉम्बे हाईकोर्ट। तब उनको एक घंटा बैठने की अनुमति दी गई, उनकी किडनी खराब हो गई थी। जब वो मरने वाले थे तो उनको छोड़ा गया। हम अंडरग्राउंड रेसिस्टेंस को देख रहे थे, आज कई चीजें बड़ी भावुकता से याद आ रही हैं। तो पटना से जो परिचित थे उनको याद होगा, पटना में दरभंगा हाउस में हम लोग का एमए का क्लास चलता था। हम लोग तो सब लोग भागे हुए थे, क्या क्लास वास करना, गिरफ्तारी सब, पढ़ाई लिखाई सब तो अपनी जगह थी। तो हमने कहा जेपी को, वहां एक बहुत फेमस काली का मंदिर है, तो जेपी को दर्शन के लिए बुलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था जेपी पागल हो गए। तो जेपी आए, देख करके पूरी स्टूडेंट दौड़ पड़े, तो उन्हें पुजारी को गिरफ्तार कर लिया जिसने उनको माला पहनाया था, और बाद में जो किया सो किया ही आपको मालूम है। तो क्या नसबंदी, क्या नेताओं के साथ अत्याचार, क्या संघ के स्वयंसेवकों के साथ अत्याचार, क्या मीडिया के साथ अत्याचार। पांचजन्य, मदरलैंड, ऑर्गेनाइजर, इंडियन एक्सप्रेस, मैं नाम ले रहा हूं, दे शोड ग्रेट फाइट ऑफ रेसिस्टेंस। अब थोड़ा मैं पॉलिटिकल बातें करना चाहता हूं। आजकल इनके पुत्र लोग जो हैं तो उनको स्मरण दिलाना जरूरी है। लालू जी भी जेल में थे, मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे, अखिलेश बाबू, हाँ, और डीएमके के मित्रों आपको बताना जरूरी है कि आपकी करुणानिधि की सरकार को इंदिरा जी ने डिसमिस कर दिया था। हाँ, तो देख रहे हैं इंस्ट्रक्शंस में आया मीडिया, ह्यूमन डिग्निटी। अब मैं आता हूं पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, और जब अपोजिशन के लोग जेल में थे तब संविधान का 42वां संशोधन

सदन पारित किया गया। और संजय बाबू की जो सेकुलरिज्म की बात होती है ना, उसी समय लाया गया था और सोशलिज्म प्रीएम्बल में। तो सेकुलरिज्म की बात करने वालों को मालूम है ना चाहिए कि विपक्षी जब जेल में थे तो ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, पीएम के खिलाफ कोई केस नहीं होगा। और रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदल दिया गया ताकि पीएम के इलेक्शन को चाहिए नहीं हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि ये अमेंडमेंट है तो वी कैनॉट इंटरफेयर। तो संसद के साथ जो बदसलूकी की गई, 5 साल का 6 साल विपक्ष जेल में मनमानी तरीके से कानून बन रहा है और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, ऑल द शेड्स ऑफ डेमोक्रेसी वेयर मर्डर्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। सारे संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की गई उस समय। जरा मैं जुडिशरी पर बोलना चाहता हूं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि नहीं, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो हम इंटरफेयर करेंगे। हम लोग को तो इमरजेंसी के पहले ही बंद किया गया था। मैं एडवाइजरी बोर्ड में कमर में रस्सा लगा के गया था पटना हाई कोर्ट में। जज साहब से कहा मैं बहस करूंगा, तो मैं तैयारी करके गया था। और उसकी एक बहुत रोचक कहानी है कि जजेस ने देखा मेरे पिताजी का नाम तो उनको फोन किया कि आपका बेटा आया था, अच्छा बहस किया था। तो कहा आप छोड़ रहे हैं कि नहीं, काम को पूरी कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे मुझे 2 साल के लिए कंफर्म कर दिया एडवाइजरी बोर्ड में। बाद में रिट में हम लोग छूटे। इन फैसलों के खिलाफ भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला ये केस है। और जब बहस हो रही थी तो वहां पर जजेस ने उस समय के अटॉर्नी जनरल नीरेंडे से पूछा कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इफ ए डिटेनी इज किल्ड इनसाइड द प्रिजन, डज ही हैव एनी रिलीफ ड्यूरिंग इमरजेंसी और नॉट। मिस्टर एजी, अगर किसी डिटेनियो को मार दिया गया जेल में तो उसको कोई राहत मिल सकती है? उनका नो मिलॉर्ड, ऑल द एवेन्यूज आर क्लोज्ड। और आज मैं बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस आर्गुमेंट को सही माना कि उम्मीद करते हैं। इट वॉज अ डे ऑफ ग्रेट शेम फॉर द जुडिशरी ऑफ इंडिया व्हेन दे बकल्ड बिफोर द एट्रोशियस गवर्नमेंट इंपोजिंग इमरजेंसी। एक जज ने हिम्मत दिखाई थी, ने डिसेंट दिया कि नहीं, इमरजेंसी में भी मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान होगा, उसका अतिक्रमण होगा तो हम इंटरफेयर करेंगे। उस बहादुर जज का नाम था एचआर खन्ना और उनको इन्होंने सुपरसीड कर दिया। सिर्फ 40 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बनते, सिर्फ 40 दिन के लिए। लेकिन ये इतनी बेशर्म सरकार थी कि उनको सुपरसीड कर दिया, क्योंकि उन्होंने नागरिक के अधिकारों की बात की थी। मुझे भी याद है न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन पर एक संपादकीय लिखा था, ब्रेव इंडियंस, इफ डेमोक्रेसी रिटर्न्स टू इंडिया प्लीज हैंग द पोर्ट्रेट ऑफ दिस पावरफुल जज इन द सुप्रीम कोर्ट। उसको हमने कई जगह बांटा था फोटोकॉपी। आज उनकी तस्वीर कोर्ट नंबर 2 में लगी हुई है। 3-4 जजेस को सुपरसीड किया गया। ये क्या बात करेंगे जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। तो इसलिए आज 50 साल हो गए तो पार्टी को ऐसा लगा कि देश को बताना चाहिए इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है। और आपसे मैं ऐसा आग्रह नहीं करता, लेकिन आज विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इस विषय को रखना चाहिए। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था।

0: कई बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले उनको खोजते आए हैं, वो सामने से चले जा रहे हैं। कहा नरेंद्र मोदी कहां रहते हैं जानते हो? कहा मुझे तो पता नहीं है। ये सारी बातें आज जग जाहिर है और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई। मैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी एक व्यक्ति कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश की स्वतंत्रता को बंधक बना लिया गया। तो ये लोग हमसे संविधान की बात करते हैं, बेशरम लोग हैं, दी शेमलेस पीपल हु आर लीडिंग द कांग्रेस पार्टी शोकेस इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के भक्षक थे और आज भी हैं कांग्रेस पार्टी का माइंडसेट, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बाद में 77 में इलेक्शन हुआ, जनता ने एक बार अपना दिखाया और जनता जब जागती है तो बहुत कसकर जागती है, जैसा भी बंगाल में जागी है। जब आप अत्याचार करेंगे, एक्सेस करेंगे तो पब्लिक रिएक्ट करती है। और उस समय मुझे अभी भी याद है कि हम लोग बैठे हुए थे राजनगर के दफ्तर में, मालूम हुआ इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गए, तो हम लोग तो रोने लगे बिल्कुल। और मुझे वो कहानी याद है, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी पीछे चल रही थी, उनके पदाधिकारियों की हिम्मत नहीं थी कि मैडम को बताएं। बाद में जब थोड़े वोट की काउंटिंग बची थी तो एक डरते हुए कि मैडम आप हार गई, तो शी वॉज शॉक्ड। तो हमेशा वही शॉक होता है जो ममता जी को हुआ है, जो कट कर रहते हैं, तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते, दिल्ली बहुत आया करते थे बैठक में, हम लोग का नाम हो गया था स्टूडेंट एक्टिविस्ट में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में JNU में बुलाया जाता था बोलने के लिए और बहुत तारीफ की जाती थी। यू यंग बॉयज फ्रॉम बिहार हैव शोन द फ्लिकर ऑफ होप इन द कंट्री, ऐसी कड़ी कड़ी अंग्रेजी बोलते थे कि अपने समझ में नहीं आता था। इंदिरा गांधी टाइट हुए भी गायब हो गए। याद है मुझे एक बार इमरजेंसी में अंडरग्राउंड मीटिंग थी, तो हमने कहा जरा किसी से मिलने चलो जरा सा, तो एक प्रोफेसर साहब बहुत मुश्किल से मिलने को तैयार हुए, हम नाम क्या बताऊं। तो हमको लगा उत्साह से बोलेंगे, तो उनका शब्द मुझे याद है, आप लोगों ने भी आखिरी कर दिया था, तो इंदिरा गांधी को कुछ ना कुछ तो करना था ना। हमने कहा कि सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा परिवर्तन। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, जब JP जनता पार्टी की विजय के बाद एक विक्टोरियस कमांडर के रूप में पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हम लोग भी आए थे उनका स्वागत करने, बड़ा उत्साह का क्षण था। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी मोटी मोटी माला लेकर खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए। तो जहां दिल्ली में कुछ बुद्धिजीवियों ने हिम्मत दिखाई, संघर्ष किया, जेल गए, वहीं समय में बदलकर रंग बदलने वाले बुद्धिजीवियों का भी चेहरा देखा और वो आज भी है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चन नाउ।
1: मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो इससे संदर्भित तो पहले उन प्रश्नों को हम ले लेंगे, फिर आपके अनेक प्रश्नों का जवाब देंगे। पहले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से संदर्भित, देवेंद्र पराशर, इंडिया TV।

0: बिरला बिल्डिंग में जो हुआ है ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन इसका पीछे ये प्लान पास करने के लिए पीछे कौन कौन आदमी है उन्होंने ही बोल रहे हैं। उनका पास रिपोर्ट आया फॉल्टी, तो फॉल्टी जो है उसको पकड़ा ही अभी पहले। आप एक संदेश दीजिए या आप न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल है तो सिर्फ तृणमूल जो ओरिजिनल है उनका पीछे लगेंगे और ऋतुव्रत तो तृणमूल को कुछ नहीं करेंगे, इसमें आपको न्यूट्रलिटी का पसंद नहीं है।
1: Pune's cold blooded murder of Ketan Agarwal has caused shockwaves across the country. NDTV has now accessed disturbing probe details in the murder plot that was allegedly hatched by his 22-year-old fiancée, Sia Goyal, and her alleged lover, Chetan. The Pune Rural Police have brought in a man who worked at accused Chetan's shop for questioning in connection with the case. According to police sources, the accused Chetan had taken Neeraj's phone on the 18th of June. The police suspect that this phone may have been used to call Sia multiple times. Investigators say the accused were in constant contact, made multiple visits to the fort, and even discussed the alleged murder plan at a cafe before the incident. The probe also reveals that Sia allegedly pushed Ketan off the fort wall during their second visit together after failing in the first attempt from the same very location 4 days earlier on the 14th of June.
2: आपने देखा था इस पूरी घटना को, सबसे पहले क्या हुआ?
3: सबसे पहले तो मैं अपना पॉइंट पर था,
2: ठीक है,
3: यहाँ से बहुत दूर है वो, फिर यहाँ का चिल्लाने का आवाज आया, फिर इधर मैं भाग कर आया, इधर भाग कर आया, फिर बोली कि यहाँ से मेरा,
2: सिया ने क्या बोला आपको?
3: सिया को, सिया ने मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं वो पर्यटक आ गए, फिर मैं उस टाइम इधर आ गया, फिर उनको पूछा क्या हुआ, फिर वो बोली यहाँ से कोई मतलब गिर गया,
2: ठीक है,
3: फिर मैंने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया,
2: ठीक है,
3: फिर पुलिस आई, फिर बाद में मैंने कुछ उसको बोला नहीं।
2: पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगा पुलिस को आने में?
3: पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा है, पुलिस की 24 घंटा इधर ड्यूटी लगती है,
2: ठीक है,
3: वो पुलिस चौकी उस साइड में, लेकिन नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है इधर, कभी कभार फोन लगता नहीं जल्दी,
2: नहीं लगता है। तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है?
3: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी, फिर मैं इधर आया, उनको पूछा, ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं, डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया।
1: NDTV's managing editor Shiv Arur has spoken to Ketan Agarwal's father. Listen in.
4: काल जी, पहले आपके फैमिली ट्रेजेडी को लेकर मुझे बहुत दुख है और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा पहला सवाल विशाल जी, क्योंकि अभी तक कवरेज में बहुत क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स सामने आए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक केतन के साथ लोहागढ़ फोर्ट में क्या हुआ था, क्या हुआ था विशाल जी?
5: जी, वो दोनों ऊपर जा रहे थे और ऊपर वो घूमने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए थे, और वहाँ जाने के बाद ये सिया नीचे बैठ गई, उसको देख के वो लड़के ने आके उसको धक्का दे दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया खाई में।
4: विशाल जी, कुछ ही दिन उसके पहले सिया ने 14 तारीख को भी धक्का दिया था केतन को, क्या आपको शक हुआ सिया पे उस टाइम?
5: नहीं, उस टाइम शक ऐसा, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है अपने बच्चे के साथ, लेकिन डायरेक्टली शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने ऐसा बताया कि सांप आया धक्का देके, लेकिन केतन जब तक संभल गया तो फिर जाके उसने हग कर लिया, तो उसको ऐसा लगा कि सच में शायद सांप आया हो।
4: क्या ये सच है विशाल जी कि केतन की बहन, आपकी बेटी ने सस्पिशन पहले जताया था, उन्हें किस बात पर शक हुआ था, क्या ये बता सकते हैं आप?
5: जी, क्योंकि जब

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
6: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
7: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
8: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
9: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
10: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
11: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
12: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
5: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards. He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
13: This location from Tel Aviv
5: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
14: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
15: The Ayatollah Khamenei is gone.
16: There has been a missile attack right behind you.
17: And we need to rush into a shelter.
18: Heading there.
19: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
5: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
20: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
21: I'll begin with this bulletin with some breaking news coming in now. This is regarding the escalating war of words over the NCRT textbook and the chapter on the 1975 that has in fact been added. Now the opposition in the latest, it's slamming the emergency chapter in the class 9 NCRT books. NCP in the latest, it said that it's sad to see politics being brought into academics. And it's not only the NCP that's in fact jumped into the fray. The UBT faction of the Shiv Sena also now underlining that, or rather alleging that from the past 12 years, emergency already imposed in our country, adding that Indira Gandhi did not put an end to democracy. We get you some reactions.
22: कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात।
23: भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे, आप लोगों पर भी पूरा बैन था। ये कांग्रेस ने ये काम किया और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने ये पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल, और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है, आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए।
24: 12 साल से देश में इमरजेंसी है, 12 साल हो गए इस देश में इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने किसी की पार्टी को नहीं तोड़ा, इंदिरा गांधी ने संविधान को खत्म नहीं किया, इंदिरा गांधी ने जब ये संघ के लोग थे जेल में, अटल जी, अडवाणी जी, जगन्नाथराव जोशी जी, बाला साहेब देवरज जी, तो जहाँ जहाँ जेल में थे वहाँ उनकी 5-स्टार व्यवस्था की थी इंदिरा गांधी।
21: And I'm joined by my colleague Ishwarya for more on this. Ishwarya, first of all, bring us on up to speed on what's the latest coming in from the opposition and what's the very central issue here? Why is history being dwindled in these corridors and chambers of politics?
25: Well, for the very first time, it will be emergency chapter that would be studied in these schools, in the NCRT books, and it is the history that will be taught as to what

0: just to make sure that justice is being served. Now, this comes at a time when uniform civil code is being discussed in Maharashtra, and this controversial comment was made by the NCP MLA, Sana Malik, where she spoke about polygamy. Let's listen in.
1: ये भारत देश और उसके कायदे कानून जो है वो संविधान पे चलते हैं, ना कि कुरान पे, और इसलिए संविधान में जो है वो सारे अधिकार सभी के लिए लागू है। मुझे ये कहना है कि मुझे अभिमान भी है देश के यशस्वी और प्रधानमंत्री यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए नहीं तो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए भी ट्रिपल तलाक जैसा एक मजबूत कानून वहाँ पर लाए हैं। बहुत सारी महिलाएँ जो जिस प्रकार से उनको छोड़ा जाता था, मुझे याद है मैं जब वुमेन्स कमीशन में थी, वो आदमी कहीं और देश में होता है और वो महिला यहाँ रहती है, उनके बच्चे साथ में रहते हैं और वहाँ से फ़ोन पे तलाक तलाक कह देता है, और तलाक कहने के बाद उस महिला के भविष्य का क्या होगा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आज तक जिन्होंने ये वोट बैंक संभाल के रखी है उन्होंने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे मोदी जी ने ये किया है और ट्रिपल तलाक जैसा एक सख्त कानून इस देश में लागू किया है जिसका फ़ायदा हमारी मुस्लिम बहनों को हो रहा है।
0: All right, with that, we'll slip into a short break. On the other side, we'll get you news from the FIFA World Cup.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: lover Chetan. Investigators say that the accused were in constant contact and made multiple visits to the fort as well before they hatched out that plan to kill Chetan.
1: Dhanashree Sales, किसकी दुकान है यहाँ पर? वो चेतन चौधरी के परिवार से कौन कौन?
2: ये उनके अंकल और इनके पापा, इधर दुकान है, इधर ही.
1: ठीक है.
2: हाँ.
1: और दुकान कब से है यहाँ पे?
2: ये कब से? बहुत टाइम से है इधर.
1: काफी समय.
2: हाँ.
1: और कितने कौन कौन है यहाँ पे, यानी यहाँ पे काम कर?
2: मालूम नहीं, लेकिन इनके घर वाले इधर है, सब इनके अंकल है, पापा है, सब इधर ही है.
1: चेतन चौधरी को आप जानते हैं? कभी देखा है उनको यहाँ पे दुकान?
2: देखा है, ऐसा हमको कभी लगा नहीं. जो गुनाह किया तो किए ही है.
1: आपने उनको देखा है? बातचीत में कैसा है चेतन?
2: बातचीत में ऐसा लगा नहीं कि ऐसा वो कर सकता है. गुनाह किया तो किए ही है, ऐसा कहने का मतलब.
1: और देखिए,
2: हाँ, इतना बोल सकते हैं. ऐसा लड़के के घर वालों को मालूम रहता है, ये काम ऐसा करने नहीं देते थे.
1: अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अगर लड़के के घर वालों को पता होता तो वो उसको ऐसा काम नहीं करने?
2: हाँ, लड़के के माँ बाप बहुत सीधे.
1: और यहाँ पर सिया गोयल के परिवार का दुकान यहाँ से कितना दूर है?
2: वो पीछे वाली लाइन में.
1: पीछे वाली लाइन में. उनसे भी आपकी जान पहचान होगी?
2: जान पहचान है, मार्केट में एक ही दुकान, एक ही बिजनेस में रहे तो पहचान तो रहती है ना.
1: वो लोग कौन सा बिजनेस में है?
2: वही ड्राई फ्रूट में भी है, ड्राई फ्रूट मसाले में.
1: चेतन चौधरी को आप जानते होंगे, उनसे कभी बातचीत हुई होगी?
3: हमारे से व्यापार रिलेशन है, बोलते हो कुछ माल लेते, माल लेके जाता है, बस उसका ही उतना ही रिलेशन है हमारा. उससे ज्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ व्यापार से ही मतलब रखते हैं.
1: जहाँ पर उनका दुकान था उसके ठीक बगल में ही जो है इनका भी दुकान है. और इनका कहना है कि चेतन चौधरी से इनके सिर्फ व्यापारिक संबंध थे और इसके अलावा इस प्रकार का कुछ वो कर सकता है, जिसके ठीक बाद इन लोगों में भी कहीं ना कहीं रोष है. और इनका कहना है कि परिजन पर भी इसका काफ़ी भारी असर पड़ा है. Well, we are sitting at the same table where the murder for Chetan Agrawal, a 26-year-old businessman, was planned. And the planning of this multi-layered conspiracy was done by his own fiancée, Sia Goyal, and her secret lover, Chetan Chaudhary. Both of them are currently under police custody. But at this point, we know that the CCTV that the police and the investigative teams have found out in that in this very cafe, both of the accused, Sia and Chetan, they come in and thereafter sit at that very table. First, they make their order, and then for hours they sit and plan the entire process of how would they carry out the 18th June conspiracy, which they also had to prove as an accident and not a murder. Also, because on June 14, already an attempt was made by Sia to push him down. However, he survived by her giving her statement that it was a snake that she saw and it was not really an attempt. But on 18th of June, when they were actually going to execute it, it was one day prior to that, on 17, that they come to this cafe in the afternoon and for almost hours sit and discuss of how would they execute this, and also if this plan would fail, which it of course didn't. Then on June 19, on her birthday, how would she execute it at Mahabaleshwar was also a point of discussion, which has been revealed in the investigation. So far, it is the CCTV footages that the police has collected, and also there are several of these technical evidences that has come to light and a part of the investigation, which eventually proves that this multi-layered conspiracy, and which was earlier shown as an accident, was well planned, not just in one day but for multiple days by Sia and Chetan.
0: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. More news coming up next on Prime 5.

0: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
1: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
0: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
7: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right and Center.
6: Hard facts.
7: War struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine. In France. In Italy.
9: At Srinagar.
7: I am Iskandar.
10: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter. The stories that shape your life.
13: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
12: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
14: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
15: एनडीटीवी टॉप्स द रॉयटर्स इंस्टीट्यूट, इंडिया रीच रैंकिंग्स अगेन, नंबर वन इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन न्यूज।
16: Chief Minister, we are

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर? अब तो फिर तो है ही नहीं, फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो तुम नहीं हो, ये बताएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पागलपना है और ये लोग पागल हो गए हैं।
1: MEA की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया।
2: Keep watching NDTV. We are slipping into a very short break. Don't go anywhere.

0: लेनी करना चाहिए।
1: सबसे सख्त मतलब क्या?
0: सक्सेस फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा,
1: और
0: फांसी की सजा कड़ी
1: कल
0: से
1: अगर ये
0: कड़ी
1: अदालत में
0: सजा,
1: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
0: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए, मैं तो बोलूँगा।
1: आप होशो हवास में ये?
0: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
1: पूजा जी, आपको क्या लगता है,
0: मुझे
1: आपका क्या
0: भी,
1: कहना है?
0: मुझे भी यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी
1: नहीं,
0: चाहिए।
1: मैं सीधी बात कर
0: आरोपी
1: रहा हूँ,
0: कौन
1: अगर
0: है?
1: आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आज आपकी
0: हाँ,
1: बेटी है,
0: आरोपी
1: अगर
0: मेरी
1: आपकी
0: बेटी हो
1: बेटी
0: तो
1: कल
0: मेरी
1: अदालत में
0: बेटी,
1: साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
0: ठीक है ना,
1: तो
0: मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये।
2: The Ministry of External Affairs recently said that an Indian passport is not a document that conclusively establishes citizenship, sparking debate over what exactly then serves as a proof of Indian citizenship. The MEA said citizenship is determined by legal provisions and prescribed procedures, not merely by possession of a passport. The BJP hit back at critics, insisting this is nothing new. Party sources cited Passport Act, saying passports can be issued in certain cases without conclusively establishing citizenship. MEA also said that this passport can also be issued to a non-Indian. So the opposition launched a sharp attack on Centre, stating that the government has made citizenship a joke, and if there is no document conclusively establishing that a person is an Indian citizenship, an Indian citizen, then what exactly or which document will exactly then go forward? In fact, Kapil Sibal went on to claim that if this is the case, then a BLO can question my identity when I go to vote, and then my vote is invalidated. If my vote is invalidated, then it goes to the BJP's kitty, as per the opposition's claim. And then the opposition said, then we are left with no answer, no certain solution, but knock the doors of the Supreme Court. So what exactly will happen in this situation? The opposition is saying that this is another plot of the BJP to get more votes. Take a look at the reactions coming in.
3: Ministry of External Affairs, that is for the government to determine. There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So MEA has to tell us what is valid, what is not valid. I do not agree with this.
4: If you read the Passport 1967 Act, it proceeds on the premise that the holder is an Indian citizen. Now please go and read Section 6(2) subsection A of the Passport Act, which says that if the applicant is not a citizen of India, you will not get a passport. Thirdly, passport is given after a very carefully verification by the police, then only passport is issued. And police verification is based on multiple, government steps are there. Fourthly, where should I get a citizenship certificate? See, my grandfather, his grandfather were born in India. So we don't have this concept of citizenship certificate. Citizenship certificate is given to only those people who acquire citizenship through registration or naturalization.
5: I think it is for the MEA to clarify themselves. They should say that has the government of India issued passports to citizens of foreign countries? As we know, passport, as per the Passport Act, is given to bona fide Indian citizens only. And therefore, it is a proof of Indian citizenship. But if it is not, then they should clarify.
6: अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे।
7: सब लोग जो हैं पागल हो गए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मैं हूँ, मेरे बाप दादा सब जो है यहाँ पे दिल्ली में रहे, अब हम क्या, फिर तो हमारे पास नागरिकता का कुछ है ही नहीं। आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं, पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर? तो फिर तो है ही नहीं, फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो तुम नहीं हो, ये बताएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है पागलपना है, और ये लोग पागल हो गए हैं।
8: एमईए की तरफ से जो बताया गया है वो एक प्रक्रिया को बताया। पासपोर्ट तो होना चाहिए लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया।
2: Keep watching NDTV. We are slipping into a very short break. Don't go anywhere.

0: किया है उसके साथ क्या होना चाहिए।
1: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए।
0: सख्त से सख्त मतलब क्या?
1: सख्त से सख्त फांसी की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की
0: कल कल
1: सजा
0: अगर
1: कड़ी
0: कल
1: से
0: अगर ये
1: कड़ी
0: अदालत में
1: सजा,
0: साबित होता है कि सिया ने ये किया है,
1: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए। मैं तो बोलूँगा
0: आप होशोहवास में ये
1: यस, मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ, जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए।
0: पूजा जी, आपको क्या लगता है,
2: मुझे
0: आपका क्या
2: भी
0: कहना है?
2: यही लगता है, अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी
0: नहीं,
2: चाहिए।
0: मैं सीधी बात कर
2: आरोपी
0: रहा
2: कौन
0: हूँ, अगर
2: है?
0: आपकी बेटी, क्योंकि आरोपी आपकी
2: हाँ,
0: बेटी है,
2: आरोपी
0: अगर
2: मेरी
0: आपकी
2: बेटी हो
0: बेटी
2: तो
0: कल
2: मेरी
0: अदालत में
2: बेटी,
0: साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया,
2: ठीक है ना,
0: तो
2: मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। एक माँ बोल रही है ये।
3: The Ministry of External Affairs recently said that an Indian passport is not a document that conclusively establishes citizenship, sparking debate over what exactly then serves as a proof of Indian citizenship. The MEA said citizenship is determined by legal provisions and prescribed procedures, not merely by possession of a passport. The BJP hit back at critics, insisting this is nothing new. Party sources cited Passport Act, saying passports can be issued in certain cases without conclusively establishing citizenship. MEA also said that this passport can also be issued to a non-Indian. So the opposition launched a sharp attack on centre, stating that the government has made citizenship a joke, and if there is no document conclusively establishing that a person is an Indian citizenship, an Indian citizen, then what exactly or which document will exactly then go forward? In fact, Kapil Sibal went on to claim that if this is the case, then a BLO can question my identity when I go to vote, and then my vote is invalidated. If my vote is invalidated, then it goes to the BJP's kitty, as per the opposition's claim. And then the opposition said, then we are left with no answer, no certain solution, but knock the doors of the Supreme Court. So, what exactly will happen in this situation? The opposition is saying that this is another plot of the BJP to get more votes. Take a look at the reactions coming in.
4: Ministry of External Affairs. That is for the government to determine. There are other citizenship proofs. For instance, the Aadhaar card is there. So MEA has to tell us what is valid, what is not valid. I do not agree with this.
5: If you read the Passport 1967 Act, it proceeds on the premise that the holder is an Indian citizen. Now, please go and read Section 6(2), Subsection A of the Passport Act, which says that if the applicant is not a citizen of India, you'll not get a passport. Thirdly, passport is given after a very carefully verification by the police, then only passport is issued. And police verification is based on multiple, government steps are there. Fourthly, where should I get a citizenship certificate? See, my grandfather, his grandfather, his grandfather were born in India. So we don't have this concept of citizenship certificate. Citizenship certificate is given to only those people who acquire citizenship through registration or naturalization.
6: I think it is for the MEA to clarify themselves. They should say that has the government of India issued passports to citizens of foreign countries? As we know, passport as per the Passport Act is given to bona fide Indian citizens only. And therefore, it is a proof of Indian citizenship. But if it is not, then they should clarify.
7: अरे अभी नागरिकता का आधार आपको बीजेपी के कार्यालय में मिलेगा, आपको वो सही करके देंगे, आप नागरिक हो जाएंगे।
8: सब लोग जो हैं पागल हो गए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मैं हूँ, मेरे बाप दादा सब जो है यहाँ पे दिल्ली में रहे, अब हम क्या, फिर तो हमारे पास नागरिकता का कुछ है ही नहीं। आधार तुम नागरिकता नहीं मानते, वोटर कार्ड को तुम नागरिकता नहीं मानते, डेट ऑफ उसको क्या कहते हैं पासपोर्ट को तुम नहीं मानते, तो क्या है फिर? तो फिर तो है ही नहीं, फिर तो देश के 130 करोड़ लोगों के पास नागरिकता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि तुम नागरिक हो तुम नहीं हो, ये बताएंगे।

0: At a cafe a day before Ketan was pushed to death at Lohgarh Fort. Investigators say it was here, at this cafe, that Sia and Chetan plotted Ketan's murder. It is here on June 17 that the two allegedly discussed the route they would take to the fort and reportedly zeroed in on the exact spot from where Ketan would be pushed off. As officers review CCTV footage, technical evidence and phone records, the case has taken a dramatic turn. Investigators allegedly discovered a relationship between Sia Goyal and Chetan Chaudhary. The two reportedly met last year at a Diwali party. Police claim the two had been in regular contact for months. Call records show more than 2,000 phone conversations over 6 months, lasting a combined 238 hours. The investigation also focused on a mysterious figure seen on CCTV at Lohgarh Fort. Despite the scorching summer heat, the man was wearing a monkey cap, hoodie and mask. Police say the individual was seen communicating with Sia through hand signals, further strengthening their suspicions.
1: तो सिया के हाव भाव कैसे थे जब वो आपके पास आई और बोली कि कोई गिर गया है
2: वो सिर्फ हेल्प कर रही थी फिर मैं इधर आया उनको पूछा ज्यादा पूछने में वक्त न गवाया नहीं डायरेक्ट सीधा पुलिस को कॉल किया
0: केतन एंड सिया हैड विजिटेड लोहगढ़ फोर्ट 3 टाइम्स ऑन मई 31 जून 14 एंड जून 18 पुलिस क्लेम एन अर्लियर अटेम्प्ट टू पुश केतन इनटू द गॉर्ज वाज मेड ऑन जून 14 बट फेल्ड According to the probe, Sia later claimed she had accidentally pushed him after being startled by a snake. On June 23, police arrested Sia Goyal and Chetan Chaudhary. Both have been sent to police custody. With Sujata Dwivedi, NDTV Bureau Report.
3: Now, days after the murder, Sia's parents have come forward and spoken to the media. Both of them are only demanding answers and a fair investigation into the case. Both stand by the statement that if their daughter has done something wrong, she should be punished. Listen in.
4: Ketan Agarwal case mein aaj pehli baar Sia ke maa-baap yani Praveen ji aur Pooja ji ye ek hospital ke room se hamare saath hain. Maine abhi bhi ek short interview liya lekin ek sawal main wapas ya ek sawal baar-baar mere तहे दिल में आता है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया तक पहुँचे पुलिस ने जो कहा है वो हम लोगों ने कई बार देखा है और एक पत्रकार के तौर पे मुझे भी लगता है कि इसमें इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं वो आरोपों में दम है आपको क्या लगता है इसमें जो जो ये आरोप लग रहे हैं आरोपी के साथ या ये जिसने गुनाह किया है उसके साथ क्या होना चाहिए
5: इसमें जो भी आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और डिले नहीं करना चाहिए
4: सख्त से सख्त मतलब क्या
5: सख्त से सख्त फांसी की सजा कड़ी से कड़ी सजा फांसी की सजा
4: कल अगर ये अदालत में साबित होता है कि सिया ने ये किया है
5: तो उसे भी फांसी की सजा दीजिए मैं तो बोलूंगा
4: आप होशो हवास में
5: यस मैं पूरे होशो हवास में बोलता हूँ जो भी इसमें आरोपी मिलेगा उसमें भले कोई भी हो मेरी बेटी क्यों ना हो उसे भी फांसी की सजा होनी चाहिए
4: पूजा जी आपको क्या लगता है
6: मुझे
4: आपका
6: भी
4: क्या कहना है
6: मुझे भी यही लगता है अगर कोई आरोपी हो तो उसे सजा होनी चाहिए
4: नहीं मैं सीधी बात कर रहा हूं अगर आपकी बेटी क्योंकि आरोपी आपकी बेटी
6: आरोपी मेरी अगर आपकी बेटी हो तो
4: कल अदालत में साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया
6: ठीक है ना मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप एक मां बोल रही है ये
3: The Ministry of External Affairs recently said that an Indian passport is not a document that conclusively establishes citizenship, sparking debate over what exactly then serves as a proof of Indian citizenship. The MEA said citizenship is determined by legal provisions and prescribed procedures, not merely by possession of a passport. The BJP hit back at critics, insisting this is nothing new. Party sources cited Passport Act, saying passports can be issued in certain cases without conclusively establishing citizenship. MEA also said that this passport can also be issued to a non-Indian. So the opposition launched a sharp attack on centre, stating that the government has made citizenship a joke. And if there is no document conclusively establishing that a person is an Indian citizenship, an Indian citizen, then what exactly or which document will exactly then go forward? In fact, Kapil Sibal went on to claim that if this is the case, then a BLO can question my identity when I go to vote. एंड देन माई वोट इज इनवैलिडेट।